तो दया पे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तो दया पे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सच्यार मेडा साईं,

शरण परे की राखो हो शर्मा, एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं कवियो बात बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरण

आज संगरी है, पूर्ण है हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो मर चाहूं सो तुम ते पा।

काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल

नम सकार तसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो घट घट के

रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे ने हरि हो, ताके ताप तनक महे हरि हो। रिद सिद्ध कर्मों सब हो, दुष्ट शाश्वत सकै न कोई।

सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जानियो। श्री यशपान कृपा तुमरी कार मैं न कहो सब तो है बखानियो। दोहरा

दुख सब बिसारण अंगीकार करे तेरा कार्य सब सुवारण सबना गल्ला सुमरत स्वामी

ताकौ तोखा कहबे अपे जाकौ ओट तुहारी हर बिसरत सदा खुआरी ताकौ तोखा कहबे अपे

पवजल अंदर बोहेती हुई परवार सुपार लंगाई। पवजल अंदर बोहित है हुई

अनित सुनित है अजात हैं अजाद हैं चरपड़ छंद प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग अंधा सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग करता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्म सर्वंग धर्म।

अमृत शाड भिखै भिखु खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंतो सुनियो गुर संगतो, तेहि मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई।

तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पहा मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दों ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे

पड़ बुझै पार, तृष्णा अहनस अगली होमै रोग विकार। ओ वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार। लख सियाणप जे करी लख सो प्रीत मिलाप, बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जीरै छुटिया गुरमुख चीने आप, तन मन गुरपै बेचया मंदिया सिर नाल। त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल, सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला। मरने की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रित पाले लेखै शास्त्र ग्रास। अंतर गुरमुख तू वसै जो पावै त्यो निरजास। जियरै राम जपत मन मान, अंतर लागी जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान रहाउ। अंतर की गत जानियै गुर मिलियै संक उतार, मोया जित कर जाइयै तित जीव दया मर मार। अहनस शब्द सुहावणै पाइयै गुर विचार, अनहद बाणी पाइयै तै होमै होए बिनास। सतगुर सेवै अपना हो सद कुरबाणै तास, खड़ दर गै पहनाइयै मुख नाम मुख हर नाम निवास। जय देखा तै रब रह शिव शक्ति का मेल, त्रिगुण बंदी तेहरी जो आया जग सो खेल। विजोगी दुख विछड़ै मन मुख लय न मेल, विजोगी दुख विछड़ै मन मुख लहे ना मेल। मन बैरागी कर बसै सच पैराता होए, ज्ञान महारस भोग वै बहुत दुख ना होए। नानक एहो मन मार मिल पी फिर दुख ना होए। श्री राग महला पहला। एहो मनो मूरख लोभिया लोभै लगा लोभान, शब्द ना पीजै साकता दुरमत आवन जान। साधु सतगुर चे मिलै ता पाइय गुणी निदान।

जहाओ। ज्योति ज्योत में लाई है सुरति सुरत संजोग, हिंसा हमें गत गए नाहीं सहसा सोग। गोरमुख जिस हर मन वसै तिस मिले गुर संजोग। काया कामण जे करी भोगै भोगण हार, तिस स्यो नेहो ना की जई जो दिसै चलण हार। गुरमुख रवै सो हागणी सो प्रभ सेज पतार। चारै अग्न निवार मर गुरमुख हर जल पाए, अंतर कमल प्रकाश्या अमृत भरिया अघाए। नानक सतगुर मीत कर सच पावै दरगै जाए। श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया गुरमतले हर बोल, मन सच कसवटी लाइयै तुलिए पूरै तोल। कीमत किने न पाइयै रिद मानक मोल अमोल, पाई रे हर हीरा गुरमाहे। सतसंगत सतगुर पाइयै एहन सब सलाह रहाओ। सच वखर धन रास लै पाइए गुर प्रसाद, जो अग्न मरै जल पाइए त्यो तृष्णा दा संदास। जम जंदार ना लगई ओ पव जल तरै तरास। गुरमुख कूड़ ना पावई सच रतै सच पाए, साकत सच ना पावई कूड़ै कूड़ी पाए। सच रतै गुर मिलियै सचै सच समाए। मन में माणक लाल नाम रतन पदार्थ हीर, सच वखर धन नाम है घट घट गहर गंभीर। नानक गुरमुख पाइए दया करै हर हीर। श्री राग महला पहला। पर मैं पाहे न विजवै जे पवे दिस अंतर देस, अंतर मैल ना उतरै त्रिग जीवन त्रिग वेस। होर कितै भगत ना होवई बिन सतगुर कै उपदेश।

सत्संगत हार पाई है, गुरमुख हार ले बिलाए। आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए। जिन हर हर नाम ना चेत्यो, सो औगण आवै जाए। जिस सतगुर पुरख ना पेट्यो, सो पौजल पचे पचाए। इहो मानक जियो निर्मूल है, इहो कोडी बदले जाए। जिन्ना सतगुर रस मिलै, से पूरे पुरख सुजान। गुरमिल पौजल लंघी है, दरगै पत परवान। नानक ते मुख उजलै, तुन उपजै शब्द निशान। श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो, वखर लिहो समाल। तैसी वस्त वे साही है, जैसी निभ है नाल। अगै साहो सुजान है, लैसी वस्त समाल। पाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर लै चलो। सौ देखै पति आए रहाओ। जिन्ना रास ना सच है, क्यों तिन्ना सुख होए। खोटे वणज वणजी है, मन तन खोटा होए। पाही फाथे मिर्ग ज्यों, दुखणो नित रोए। खोटे पोते ना पवै, तिन हर गुर दर्शना होए। खोटे जात ना पत है, खोट नसी जिस कोए। खोटे खोट कमावना, आई गया पत खोए। नानक मन समझाई है, गुर कै शब्द सलाह। राम नाम रंग रत्या, पार ना भरम तिना। हर जप लाहा गला, निरपौ हर मन माहा। श्री राग महला पहला, कर दूजा। धन जोबन अर फुलड़ा, नाठी अड़े दिन चार। पबन केरै पत ज्यों।

को रहे ना भरिए पाई। को सोई का जी जिन आप तजया एक नाम किया आधारो है पी होसी जाय न जासी सच्चा सृजनहारो। पंज वक्त ने वाज गुजारै पड़े कतेब कुराणा नानक आखै गोरस देई रहयो पीणा खाणा। श्री राग महला पहला घर चौथा।

नाई। जिता दे तिता हो खाओ, ब्यादर नाही कह दर जाओ। नानक एक कहे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास। आपे नेड़ै दूर आपे ही, आपे मंज म्यानो। आपे वेखै सुने आपे ही, कुदरत करे जहानो। जो तिस भावै नानका, हुक्म सोई परवानो। श्री राग महला पहला घर चौथा, कीता कहा करे मन मान। देवन हारै कै हथ दान, भावै दे न देई सोए। किते के कहिए क्या होए, आपे सच भावै ते सच। अंधा कच्चा कच ने कच रहाओ, जाके रुख बिरख आराओ। जेही तात तिहा तिन नाओ, फुल पाओ फल लिख्या पाए। आप बीज आपे ही खाए।

रहे गुर कै शब्द विचार। धंधा तावत रह गए लागा साच प्यार, सच रतै मुख उजलै तित साचै दरबार। सतगुर पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार, इसनान दान चेता करै दूजे पाए खुआर। हर जियो अपनी कृपा करे ता लागे नाम प्यार, नानक नाम संभाल तू गुर कै हेत अपार। श्री राग महला तीजा, किस हो सेवी क्या जप करी, सतगुर पूछो जाए सतगुर का भाणा मन लई विचो आप गवाए। एहा सेवा चकरी नाम वसै मन आए, नामे ही ते सुख पाईऐ सच्चै शब्द सुहाए। मन मेरै अनदन जाग हर चेत, अपनी खेती रख लै कूंज पड़ेगी खेत रहाओ। मन की आयशा पूरी आ शब्द रहा भरपूर, पै पाए भगत करै दिन राती हर जियो वेखै सदा दूर। सच्चै शब्द सदा मन राता, भ्रम गया शरीरो दूर। निर्मल साहिब पाया साचा गुणी गहीर, जो जागै से उबरै सूते गए मुहाए। सच्चा शब्द ना पछाण्यो सुपना गया विहाए। सुनिए घर का पाहुणा जो आया त्यो जाए, मन मुख जन्म बिरथा गया क्या मोह देसी जाए। सब किश आपे आप है होमै विच कह न जाए, गुर कै सब पछाणिए दुख होमै विचो गवाए। सतगुर सेवन अपना हो तिन कै लागो पाए, नानक दर सच्चै सचियार है हो तिन बलहार जाओ। श्री राग महला तीजा, जे वेला वक्त विचारीऐ ता कित वेला भगत होए। अंधन ना मैं रत्या सच्चै सच्ची सोए, एक तिल प्यारा विसरै भगत कने ही होए। मन तन शीतल साच स्यो सास ना बिरथा कोए। मेरे मन हर का नाम त्याए, साची भगत ताथी है जा हर वसै मन आए रहाओ। सहजे खेती राही है सच नाम बीज पाए, खेती जम्मी अगली मनुआ रजा सह सुपाए। गुर का शब्द अमृत है जित पीतै तिख जाए, ए मन साचा सचरता सच्चे रहया समाए। आखण वेखण बोलना शब्दे रहया समाए, बाणी वजी चौजुगी सचो सच सुनाए। हौमै मेरा रह गया सच्चे लया मिलाए, तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिव लाए। नदरी नाम त्याई विणकर्मा पाया ना जाए, पूरे भाग सतसंगत लहै सतगुर भेटै जिस आए। आंदिर ना मै रत्या दुख भिख्या विचो जाए, नानक शब्द मिला बड़ा नामे नाम समाए। श्री राग महला तीजा, अपना भौ तिन पायो न जिन गुर का शब्द विचार। सत संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार, दुबदा मैं

पवित्र संतन की तूरे, सब छडाई खसम आप पर जप भई ठरूरे, करते किया तपाव सो दुष्ट मोए होच मूरे, नानक रत्ता सच नाए पर वेखै सदा हजूरे। बारह माह माज महला पंजमा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर्म कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम, चार कुंट दैदस ब्रह्मे थक्याए प्रभ की साम, तेन दुदे ते बाहरी कते नया वै काम, जल बिन सा कुमलावती उपजे नाही दाम, पर नाह न मिलिए साजने कत पाइए विश्राम, जित कर हर कंतना प्रगटी पठनगर से ग्राम, श्रब सिंगाल तंबूल रस सण दे ही सब काम, प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मी सज्जन समझाम, नानकी बेनंतिया कर कृपा दी जय नाम, हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निश्चल ताम, चेत गोविंद अराधिया होवे नंद कणा, संत जना मिल पाई रचना नाम पना, जिन पाया प्रभ अपना आए तिसे गणा, एखन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना, चल थल मैयल पूरिया रविया विच बना, सो प्रभ चित न आवी कितड़ा दुख गणा, जिनी राविया सो प्रभु तिन्ना पाग मना, अदर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना, चेत मलाए सो प्रभु तिस कै पाए लगा, बसाख तिरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम बशो, पर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो, पुत्र कलत्र ना संग तना हरे अविनाशियो, पलच पच सगली मुई झूठे तंदे मोह, एक सहार के नाम बनगे लइए खोय, दई विसार बिगुचना प्रवण अवर न कोय, प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोय, नानकी प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त होए, विसाख सुहावा तां लगै जां संत भेटै हर सोए, हर जेठ जुड़ंदा लोड़िया जिसे अगे सब नवन, हर साजन दावण लगियां किसे न देई बन, मानक मोती नाम प्रामुन लगे नाही सन, रंग सवे नारायण जेते मन भवन, जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन, जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन, अपन लिया जे मिलै विछड़ क्यों रवन, साधु संग पुरावते नानक रंग मनन, हर जेठ रंगीला तिस तनी जिसकै पाग मथन, असाड़त पंदा तिस लगै पर ना हुन जिन्ना पास, जग जीवन पुरख त्याकै मानस संधियास, दोए पाए विगुचिए गल पई सुजम की फास, जेहा बुझे सो लुणे मथे जो लिखियास, रैण बिहानी पछू ताणी उठ चली गई निराश, जिन को साधु भेटी है सो दर गै होए खलास, कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास, प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास, असाड़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास, सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार, मंत्र रत्ता सच रंग इको नाम आधार, विख्या रंग कुड़ा व्यदिसन सबे शार, हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार, वाण तिन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख पार, हर मिलने नु मंड लोचदा करम लावन हार, जिन सखिए प्रभ पाया हूँ त

पोखसुखंदा सर्वसुख जिस बख्शे वे परवाह। माघ मजन संग साधुआ तूड़ी करे स्नान, हर का नाम ते आए सुन सब नानु करदान।